0: तैयार करेंगे जिसमें हिस्पानवी ठेकेदारों का तआवुन भी शामिल होगा। गुर्गुन ने हस्पानवी फ़जाइया की जानब से हुजट के इंतखाब को दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन की सबसे नुमाया मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि हुजट के इब्तदाई वर्जन टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से तैयार और फराहम किए जाएंगे, लेकिन स्पेन में ठेकेदारों के तआवुन और वहाँ इजाफी सर्टिफिकेशन के साथ हम एक ऐसा वर्जन फराहम करेंगे जो दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तैयारा शुरू में स्पेन की ज़रूरियात को पूरा करेगा, जिसके बाद इसे नेटो के दीगर अराकीन और दोस्त ममालिक को पेश किया जाएगा।
1: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और तनाज़ा ख़त्म होते ही तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी आएगी। ट्रंप ने बुध को मोंटाना में सहाफ़ियों से बातचीत में के दौरान कहा है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो खुद इसका खात्मा चाहते हैं। इनके पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होंगे और तेल की कीमतें चट्टान की तरह नीचे गिर जाएंगी। इससे कबल मोंटाना में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने इस बात पर गैर यकीनी का इजहार किया कि वॉशिंगटन तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशों के दौरान किन ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इनके पास कोई बहरिया नहीं है, इनके पास कोई फ़ज़ाइया नहीं है, इनकी फ़ौज तबाह हो चुकी है और इनके रहनुमा जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे शायद इनके रहनुमाओं को छोड़ देना चाहिए था क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हम आखिर किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ने ईरान को माजी में मशरक़ वस्ती की एक गालिब फ़ौजी कुव्वत के तौर पर भी बयान किया और दलील दी है कि अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों ने इसकी सलाहियतों को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान मशरक़ वस्ती का बदमाश था, ये मुल्क अब इतना ताकतवर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था।
0: ओमान ने अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव में मजीद इजाफे को रोकने के लिए मुज़ाकरात की अपील की है। यह बयान सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बूसईदी की जानिब से पाकिस्तान के दारुल्हुकूमत इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सामने आया। बूसईदी ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार के साथ एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जोर दिया कि इलाकाई बहरानों के हल का वाहिद रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव को मजीद बढ़ने से रोकने की ज़रूरत पर ख़ास तवज्जो मबजूल करवाई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाकाई चैलेंजेस पर काबू पाने और तनाव को कम करने के लिए तामीरी शराकत दारी और बातचीत नागुज़ीर है। हम खित्ते में एतमाद साजी और पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के सफारती किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी इस बात की तस्दीक की कि अमरीका और ईरान के तनाव के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ओमान के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखता है। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए सफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान बदर अल-बूसईदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन राबते के ज़राए को खुला रखने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी, मवासलात, मीडिया और आर्काइव्स के शोबों में चार नए तआवुन के माहदों पर भी दस्तखत किए गए।
1: अमरीकी रोजनामे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अमरीका ने इलाकाई मुसलह अफवाज के साथ तरबियती मशकों के लिए कई सौ फौजियों को लातिनी अमरीका में तैनात किया है क्योंकि पेंटागन मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम को वसत दे रहा है। फोर्ट रॉम न्यूयॉर्क में कायम 10वें माउंटेन डिवीजन के फौजियों ने पनामा में नए कायम करदा जंगलाती तरबियती मरकज में सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं और वो कोलम्बिया और होंडुरास के इसकी मुसल्ला फौज के साथ तरबियत हासिल करेंगे।
0: इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइली शहर कुरियात गात में इंटेल के सेमीकंडक्टर कारखाने में धमाके के नतीजे में कम से कम 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि हंगामी इमदादी टीमों ने आग लगने और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक कीमियाई मवाद के अखराज पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की है। द यरूशलम पोस्ट ने इसराइल की हंगामी सर्विस मेगिन डेविड एडम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि बुध के रोज़ होने वाले इस धमाके में 3 अफराद को शदीद चोटें आई हैं। अखबार के मुताबिक इसराइली पुलिस को शुबा है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हो सकता है, तहम अभी तक इसकी हतमी वजह की तस्दीक नहीं हुई है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: टेक्नोलॉजी की दुनिया के अरबपति एलन मस्क ने बुध के रोज जारी करदा बयान में कहा है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को इक्तदार छोड़ देना चाहिए। मस्क ने सोशल मीडिया एक्स से लिखा है कि कत्लोगारत का सिलसिला जारी है, लिहाजा ज़ेलेंस्की के जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने स्पेस एक्स के तैयार करदा सेटेलाइट इंटरनेट निज़ाम स्टारलिंक की सुस्त रफ्तारी की शिकायत की और मस्क से मुतालबा किया है कि वो इस रफ्तार

0: उर्दू में खबरें खत्म हुई।
1: और लीजिए सामिना बेग गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं बिल आशिक़ी कैसी और गाया है काया खान ने।